0: रुपयारी सत्संगत सतगुरों ने पार बख्शिश की रहमत की कंठपाठा के भोग सुखनी साहब के भोग पे सतगुरों ने महान हुक्मनामा बख्शिया सानू ये मत दिती कि भाई किस तरह गुरु का हुक्म मनना है जो नर दुख में दुख नहीं माने आप ततियां तो लोहां ते बैठ के भी सानू दर्शाया है कि दुख नू दुख नहीं मनना सो आओ सतगुरां दा धन्नवाद सारिया मतावां बीबियां दे चरणां च बेनती है जो भी जिन्हां जिन्हां ने भी सुखनी साहब दे जापत विच भाग लिया है सारिया ही सिरों पौला उठ के जी सारिया बीबियां खड़िया होके बीबी सुरिंदर कौर कितने की जथेदार नहीं
1: हाँ शुरू करो आप
0: आओ आओ सारियां उठ गई उठो उठो उठो उठो सत श्री अकाल

सारियां मिल गया जे किसी नहीं मिलिया वो बाद च आप उधर स्टेज पर भी दे सकते हैं हाँ जी सो सारियां दा सारे ही माई भाई दा भाई जिहड़े 40 दिन लगातार आ रहे बहुत बहुत धन्यवाद सतगुरु मेहर करन आप सारियां नूं रहमत भरिया रखन तंदुरुस्तियां बख्शन जो आप अगले साल फिर इसी तरह बद चढ़ के सेवा करिए बहुत बहुत धन्यवाद समूह संगतां दा वाहेगुरु जीओ कवे वाज बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रे हमारा अपना जान करो पटपारा हमरे दुस्वे दुंगावो आप दे मोए बचावो सुखी वसे मोरो परवारा से सिख सवे करतारा

वचन बल पावे सोई दुगनत से व्याप्त कोई डल सुने गुंग जो जाय सुसना पावे सुने मूर्चित लाज चतरता आवे दुख दर्द भौ निक ना तिन्नर कह रहे हो जाकी एक वो चौपी को के चौपी समुद्र सचपण जय सहज पंथ इनके जय पादरो सुधी अष्टमी रविवार रात

तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन में सिमरन करया सब निदान दस अष्ट सिधान, ठाकर करतल धरया जन नानक बल बल सद।

चित केशा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबे तुम गावो, आप आदे मोहे बचावो। सुखी वसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबे करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आसंगरिए। पूर्ण होए हमारी आशा, तुर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें

नमस्कार तिजी को हमारी सगल प्रजाजन आप सुवारी सिवकन को सवगुन सुख दियो शत्रुन को बल मोहद कियो।

दुष्ट दोख ते लियो बचाई। कृपा करी अंपर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सवराता। किल विक सकल दे को हरता, दुष्ट दोखियन को सह करता। श्री अस्तु जब भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन वांछत बल पावे सोई, दुख नंत से व्यापत कोई अड़िल। सुने गुंग जो जाए सुरस ना पावे, सुने मूढ़ चित लाए।

कोटक विष्ण महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते रव सस्क्रोर जलेश दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भाखत नेत सुर्गवास रघुवर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो ए कथा सुने अर गावे दुख पाप ते निकट नावे विष्णु भगत की ये फल होई आद व्याद स्वै सके न कोई सम्मत।

तिस साहिब की टेक नानक मने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे तिस साहिब की टेक नानक मने माहे जिस सिमरत

एक ओहकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमर कै।

का होए बिचारो तित कर गावह सोहेला सिवरेह सिरजनहारो तुम गावह मेरे निरभाव का सोहेला हो वारी जित सोहेलै सदा सुख होए रहाओ नित नित जीड़े समालियन देखागा देवन हार तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कवन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावह तेल देहो सज्जन असीसड़िया जहो वै साहिब स्यों मेल घर घर एहो पहुचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से दे आवन राग आ

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

नानक सी जाय। जय प्रसाद हर प्रसुख बसाय, सुत प्रात मीत बंता संग हसाय। जय प्रसाद पीवे शीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमला। जय प्रसाद भोगे सब रसा, सगल समग्री संसाद बसा। दिने हस्त पाम करन नेतर रसना, तिसे त्याग अवर संग रचना। ऐसे

साधु संग सदा सुख पावे, सत्संग बस अगोचर रह, साधु कै संग आजर सह, साधक संग बसे थान ऊंचे, साधु कै संग बहल पहुंचे, साधक संग दृढ़ सब धर्म, साधक संग केवल पार ब्रह्म, साधक संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान, साधक संग सब कुल उदार, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार, साधु कै संग सो धन पावे, दस्तंते सब गोबर सावे, साध संग धर्म राय करे सेवा, साधक संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप रायन, साध संग अमृत गुण गायन, साधक संग सर्वधान गम, नानक साधक संग सफल जनम, साधक संग नहीं कशकाल, दर्शन भेड़ तो होत निहार, साधक संग कलुकत हरय, साधक संग नरक पर हरय, साधक संग ईहा ऊहा सुवेला, साध संग बिछरत मेला, जो इच्छाए सोई फल पावे, साधक संग ना बिरथा जावे, पार ब्रह्म साध रत बस नान उदर साध सुंदर सै, साधक संग सुनो हर डाव, साध संग हर के गुण गाओ, साधक संग न मंते बिसरा, साध संग सर पर निस्तरा।

अष्टपदी जिसके अंदर राज विमान सो नर्क पाती हो समान जो जाने मैं जो बलवंत सो होवत विष्टा का जंत आपस को कर्मंत का अवय जन्म मरे बो जोन प्रमावे तन भूमगा जो करे गुमान सो मूर्खंदा अज्ञान।

नरक स्वर्ग फिर भरे अवतार। अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवय हरदर के को कैसे गवय। आपस को जो भला कहावे तसे भलाई निकट न आवे। सर्व की रेन जाका मन होय कहो नानक ताकि निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कछ होए तब उसको सुख नाई कोए। जब जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब तारे को बैरी भी तब लग रे चल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माए तब लग तर मराए दे सजाए। प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक छुट्टे। सहज घटे लख उड़ता वे तरफ न आवे माया पाछे पावे। अनक भोग बिखिया के कर न तृपतावे खप खप मरा। बिना संतोख नहीं कहु राज स्वप्न मनोरथ ब्रिथे सब काज। नाम रंग सर्व सुख होए बड भागी कैसे प्राप्त होए। करण कराम न आपे आप सदा सदा दान कर जाप। करण कराम न करने हास के याद कहाँ विचार। जैसी

आए। आप उपदेशा समझे आप आपे रचया सबके साथ, आप किनु अपन विस्तार सब का शुसकाव करने हार। उसते पेन कह हो किश होए, थान तनंतर एकास होए।

मोख संघातों की सदा अपवेत संघातों की के सहकार ही मेहत संघ के धोखी को डान लागे संघ के धोखी को सब त्याग संघातों की माँ अहंकारी संघातों की सदा बेकारी संघातों की जन्म मरे संघ की दुखना सुख से टर संघ के धोखी को ना ही ठाओ नानक संभा वैथा लय मिलाये संघ का दुखी अदबीत टूटा है संघ का दुखी कितने काज ना पहुंचा है संघ के दुखी को ध्यान भरमाइए संघ का दुखी उजड़ पाइए संघ का दुखी अंतर दे थोथा जो सास बिना मृतक की लोथा संघ के दुखी की जड़ किश ना है अपन भी जा बे खाए संघ के दुखी का वरना रखन हार नानक संभावे तलय उबार संघ का दुखी एओं बिरलाए जल भी हूं मछली तड़फड़ाए संघा दुखी भुखा नहीं राजे जो पावक इंद्र ने त्रापै संघा दुखी छुटे अकेला जो बुआड़ तिलखेत माए दुहला संघा दुखी धर्म ते रहत संघा दुखी सदमिथिया कहत कीर्तनंदक का तुरे पया नानक जो तस भाव है सोई थिया संघा दुखी बिगड़ू पय जाए संघे दुखी को दरगह मिले सजाए संघा दुखी सदा सह गाइय संघ दुखी न बले ना जीवाइय संघ दुखी की पूजे न आशा संघ का दुखी ओठ चले नासा संघ का दुख ना तृष्टा कोय जैसा भावे तैसा कोई होय पया कीर्तना मिट्टा कोय नानक जान सच्चा सोए।

जाए अष्टपदी मानु की टेक ब्रिति सब जान देवन को एका भगवान जिसके दिया रहे अगाहे बौर न त्रिशुना लागे आए मारे राखे एक हुआ मानु कह किशनाई हाथ उसका हुक्म भूज सुख होए तिसका नाम रा कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए नानक बिघ्न न लागा कोहे

राष्ट्रपति संजना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर भाव समेत विसारो चरण कमल हृदय में उतारो करण कारण सो प्रभ समराथ दृढ़ कर गहो नाम अलवाते तन संचो वो भगवंत संजना का निर्मल मन ते काश राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार गुण उठता मैं सो तन हर सेवा ते पामे जिस सुख अर्थ बांछे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करे परि करनी सा शोभा बज हर की सरणी अनुग पावी रोग ना जाहे रोग मिठे हर अवखद लाए सर्व निधान मेर नाम निधान जब नानक दर गए प्रवान मन प्रभु दो हर के नाय दादे तावत आवे ठाए तागो बिघन ना लागे कोए जागे हृदय बसे हर सोए कलता ती ठंडा हर नाव सिमर सिमर सदा सुख पाओ भाव बिन से पूर्ण हुए आस भगत पाया तम प्रगास

तब कहते हो ता जब धारी अपन सुन समात बैर विरोध के संग कमाद जब इसका वर्ण चिन्ह जाप तब हरक सो कहो किसे व्यापत जब अपने आप आपार भ्रमता मोह का कि सुबत ब्रह्म अपन खेला भरतीजा नान करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुगत कहो किसको गनी जब एक हर आगम अपार तब नरक सुर कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शगत शगत कहो के तठाए जब आप अपनी जो तरह तब कम कमन तब कमन ने डर कमन कत डराए आपन चल ताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसंत है जन्म मरण का कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप आप ये चर्जा नानक आपन रूप आप यो प्रजा जय निर्मल पुरख पुरख पातोता तैबिल मैल कह क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्भान तय कौन कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश।

जब अपनी शोभा आपन संग मनाई तब कमन माए बाब मित्र सुत पाई जय सर्वकला अपे प्रवीण तय वेद गदेव कहा कवचीन। जब अपने आप आप उतारे तो सगन अप सगन कहा विचार है जे आपन ऊंचा अपन आप नेहरा तय गौन ठाकुर गौन गये चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानू आप जा शल अशेद अभे समाया ऊहा किसे ब्यापत माया आपस गुआ पे आदेश तय उनका नाई प्रवेश जय कह एक एक भगवंता तय कौन अचिंत के सलागे चिंता जे अपन आपतिया आपतिया रा तय कौन कथे कौन सुनने हार बहा ब्यों दूजते उचा नानक आपस गुआ पे बहुचा जय आप रचो प्रपंच आकार ते गुण में किन्नो विस्तार पापन तय पही कहावत कहू नरको स्वर्ग बन छावत।

हमारी प्रभु की उस्त करो संत मीत सावधान एकागर चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सोत निदान सर्विच्छा ताकि पूर्ण होए प्रदान पुरख प्रकट सब लोए सबते ऊज पाए स्थान बहुर न होवे आमन जान अड़तन खाड़ चले जन

नए काम, आतधुत प्रचान मेत काते अखंड अलिसे कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रनाड अंडड बाडे चारी शांत वे प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे पारे हरि अंग करि अंग नामे कामे पजंग प्रयास छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले

साध कहते, क्या छेज देश है, क्या भेज भेस है, क्या गांज कर्म है, क्या पांज परम है, क्या भेज लोक कै, क्या देत शोक कै, क्या विभूत वर्ण है, क्या विभूत कर्ण है, के राजंग प्रवाह है, के धर्मंग तुझा है, क्या शोक वर्ण है, के सर्वा अपर्ण है,

के सर्वत्र पाहुने के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता

है। ओंकार रूपे अनास रूपे अनंगी है नामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभग त्रिभादे गंजे गादे सुभंग सर्वभागे सो सर्वानुरागे त्रिपुकित स्वरूप है, अछेद है, अछूत है, केदार कंग प्रनाश है, पृथ्वी और प्रवास है,

पातै। निरसागं श्री कह अमितो मी कह दैवं प्रभाहे अजय है अजा है भगवती शांत व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजिर हजूर है हमेशा सलाम है।

जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्मवास है, जास के जास है, प्रजांग प्रयाशंद नम।

हजार भूत भविख भवान के भगवत कौन गने नहीं जात बिचारे श्री पात श्री भगवान पदे बिनवंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सोसन्यम नेम अनेक बसेखे वेद पुराण के तेव कुरान जमीन जमान सुबान के पेख है

ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाओ, दो ही कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ, दाता करता है आप तुझ देवे करे पसाओ, तू जानो ही सब सह दिल ऐसे जिन कवाओ, कर आसन डिठो चाओ, कर आसन

मुसलमाना सिर्फ शरीयत पढ़ पढ़ कर बिचार बंदे से जे पहुंच बंदे बिल्कुल को दीदार हिंदू सलाह ही सलाहन दर्शन पपार तीर्थ नावे अच्छा पूजा करवा।

सच्चा सहवेक तुझे सचो सच वरताया जिस तू दे तुझ मिले सच तिनी सच कमाया सतगुरु मिले सच पाया जिनका हृदय सच वसाया

0: जति सता वे जुक्त ना जाने छट बहे है घर बार सबको पूरा पे हो कट न कोई आखे है पत प्रवाना पीछे पाई है का नानक तो ये जापी मोहल्ला पहला
1: वधी सो जिगनान का सच्चा वे के सोए सब निछाला मारिया करता करे सोए अगे जात न जोर है अगे जियो नवे
0: जिनकी लेखे पत पवे चंगे सही के
2: औरी तो करम जना को पाया ता तिनी कसम ते आया इना चंदा के बस कुछ ना ही तुर वे की जगत पाया एक नानक तो मिलाए कापो तुत खवाया गुर कृपा ते जाने जते तुत आप हो जाया।

0: परिषद कूड़ी राजकूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहा सर्व धर्म का डेरा जुड़ नाल कूड़ रहे भरपूर मथा टिका देर धोती का खाई हाथ चूरी जगत का साई नील वस्त्र पहरोए प्रवान मलेश तान ले पूजे प्राण अब भाग्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना
1: देख के चौका गड्डी का ऊपर आए बैठे कूड़िया

महाराज सूली तो सूल बना के कट देंदे ने, सुपने विच ही भुगता देंदे महाराज। पौड़ी पौड़ी दे नाल लिखिया कुछ नहीं हुंदा प्यारिओ, अपन सरलेख वेखना पैंदा ध्यान दिओ। ये वार है बड़ा हंस की वार महला चौथा, इहदा मतलब जिन्नियां पौड़ियां आउणगियां इक ही पौड़ियां इहदियां सारियां ही गुरु रामदास जी दियां, पौड़ी दा लिखिया कुछ नहीं हुंदा, ध्यान दिओ। बाणी जदों पढ़दे हां ते संथ्या करनी आ ते जरूरी है सत्संगीओ। 315 अंग उत्ते गौड़ी की वार पढ़दे हां, गौड़ी की वार दो ने, वैरू गोजरी की वार दो ने, रामकली की वार तीन ने। तो सत्संगीओ गौड़ी की वार जदों आप पढ़दे हां उहदे विच सत्संगी पहली बार दे 315 अंग उत्ते आप पढ़ते, पौड़ी दे अगे लिखिया हुंदा पंज, कली पौड़ी लिखी है, पौड़ी दे अगे कला पंज लिखिया हुंदा। तो जिन्हां नूं समझ नहीं कहिंदे पौड़ी पंजवीं, पर पौड़ी पंजवीं नहीं हुंदी प्यारिओ, उत्थे पौड़ी गिणो। जे आपां आउणी इत्थों दर्शन कर लैंदे हां ते जदों पौड़ी नूं आपां गिणांगे 315 अंग उत्ते सत्संगीओ दो वार आउंदा पौड़ी दे अगे लिखिया पंज, वह क्यों लिखिया उन्हें पढ़ना की है, ये बेनती करांगा। आम तौर पर जिन्हां नूं पता नहीं वह की करते हैं पौड़ी पंजवीं, जे उन्हें पंजवीं पढ़ांगे सत्संग जो गिण के वेखो पौड़ी पंजवीं नहीं गई। हुणे आपां आपना बेनती मैं सांझी करदा, इत्थे सच्चे पातशाह जी ने लिखिया है कि पौड़ी दे अगे पंज, पर जिहड़ी ये पौड़ी है सत्संगीओ इहदी गिणती है 28, 28वीं पौड़ी है। तो जे इन पौड़ी पंजवीं कहांगे तो गलत हो गया, पौड़ी 28वीं है, इसलिए इन पढ़ना पौड़ी पंज, जिदा लिखने महला पंजवा। इस तरह सत्संग पढ़ना पौड़ी पंजवा, मतलब कि जी वार है गौड़ी की वार यह है चौथे पातशाह की। बाकी जिन्नियां पौड़ियां पिछे आप पढ़ रहे 27, ये सारिया ही गुरु रामदास जी द, इत्थे पौड़ी बदल गई, इत्थे पौड़ी जिहड़ी 29वीं है, 28वीं है अते 29वीं है, यह पौड़ी सत्संग गुरु अर्जन देव जी दी है। बाकी पौड़ियां सारियां गुरु रामदास जी दियां, उत्थे गुरु जी ने बकायदा लिख दिता कि यह जिहड़ी पौड़ी है उहदे नाल पंज पाता पंजवें पातशाह की पौड़ी है। इस तों अगे जावांगे सत्संगीओ ते 16 अंग दे उत्ते इत्थे महाराज जी ने लिखिया दो वार पौड़ी महला पंजवा, मतलब जिहड़ा पहला पौड़ी है 15 अंग ते उत्थे नाल लिखिया पंज, उत्थे पढ़ना पौड़ी पंजवा, मतलब पौड़ी ये पंजवें पातशाह जी की है। 16 अंग दे उत्ते आपां जदों पढ़दे इत्थे लिखिया पौड़ी महला पंजवा, 1291 अंग ते लिखिया है पौड़ी नवी महला पंजवा। इहदा मतलब हुंदा कि वार किसी होर गुरु जी की चल रही है, जे विच पौड़ी बदल गई तो गुरु जी ने उत्थे नाल लिख दिता कि यह जिहड़ी पौड़ी है यह पंजवें पातशाह जी की है, बाकी पौड़ियां सारियां चौथे पातशाह जी दियां। इसलिए इत्थे आपां जिहड़े दर्शन हुण आपां वार कर रहे हैं इहदे विच लिखा कल्ली पौड़ी, कुछ नहीं नाल लिखिया हुंदा पौड़ी दे, किते वेख ले पौड़ियां लिखिया कुछ नहीं हुंदा, ते आपां नूं की पता लगे हुण किहड़े गुरु की पौड़ी है। जिहड़े सलोक पढ़े आपां तीजे पातशाह दे, हुण आपां सरलेख वेखणा हुंदा कि पिछे सरलेख की है, सरलेख है बड़ा राग वड़हंस महला चौथा। इहदा मतलब है कि जिहड़ी इह वड़हंस की वार है इहदियां पौड़ियां 21 दियां 21 ही गुरु रामदास जी दियां महाराज दियां, ते गुरु रामदास जी कृपा करदे ने पौड़ी धन धन सतपुरख सतगुरु हमारा। गुरु जी कहिंदे हन धन है सतपुरख, सच्चे पुरख परमात्मा दा सरूप सतगुरु हमारा, साढ़े सतगुरु जी धन हन जिहड़े वाहिगुरू दा रूप हन। जित मिलिया हमको सांत आई, जित दा भाव जिस गुरु नाल मिलन करके हमको सांत आई, सानू शांति आ गई। जिस मिलिया मन होए आनंद, सो सतगुर कहीए जिस गुरु दे दर्शन करन नाल मन नू आनंद आ जाए, उहनू प्यारे गुरु कहिंदे ने। कई बार साडे मन नू बड़ी परेशानी हुंदी है, गुरु चरण चाह के बहो, शांति ना बहो, प्यार ना बहो, दुख अपना गुरु अगे बेनती करो, दुख कटिया जांदा। सत्संग गोल्फ शहर है कनेडा विच, उत्थे कथा दी हाजरी सी ते दुपहर दा समां बहुत विरली विरली संगत आउंदी है, एक भैण अपना दुख रो रही गुरु महाराज दे।

कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं करते रह। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मनाय वस्या जन इच्छा सा पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिट्टो हो जिह दी ए वडियाइया कहे नानक सुनो संतो सब धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो

जिन हर नाम स्यों हमारी प्रीत बनाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संग जी, आप संगतां ने अमृत वेले दवाना विच हाजरी भर के गुरबाणी कीर्तन कथा दे लाहे प्राप्त कीते हन। सतगुरु साहब जी रहमत करन, आप संगतां दी दर हाजरी प्रवान करन, धर्म करो नाम दान चढ़दी कला दी दात बख्शन जी। इत्थे अमृत वेले दवाना दी संपूर्णता है। शामा दे दवाना विच आप जी ने वध तों वध गुरु घर हाजरियां भरनियां। हुण कड़ाह प्रसाद दी देख वरतरी है, उपरंत जो बच्चों तो आप बाणी सरवण करांगे जी।

0: एक माई जोग त्याई तिन चेले प्रवान
1: एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान
0: जिव तिस भावे ते वै चलावे जिव होवे फरमान
1: नजर न आवे बहुताए हो बिडान
0: आदेश तिसे आदेश
1: आज नील अनाद नाथ जग जग एको एस
0: आसन लोए लोए भंडार।

0: पेख कौ कह न सकत के
1: अचल मूरत अनुभव प्रकाश में तोज भेज
0: कोट इंद्र इंद्राण सहे सहाण गण जय तव सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्णत समत नमस्तंग रूपे नमस्तंग रूपे
1: नमस्तंग पेखे नमस्तंग लेखे
0: नमस्तंग काये नमस्तंग जाय
1: नमस्तंग व्यंजे नमस्तंग पंजे
0: नमस्तंग नामे नमस्तंग ठामे
1: नमस्तंग कर्म नमस्तंग धर्म
0: नमस्तंग नामंग नमस्तंग तामंग
1: नमस्तंग
0: बाहे नमस्तंग टाहे
1: नमस्तंग
0: छेदे नमस्तंग गादे
1: नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे
0: नमस्तंग उदारे नमस्तंग पारे
1: नमस्तंग पारे
0: नमस्तंग भूते नमस्तंग जूपे
1: नमस्तंग
0: निर्देशे नमस्तंग निर्पेशे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्काते नमस्तंग लोके नमस्तंग सोके नमस्तंग त्रमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग सर्गे नमस्तंग रंगे नमस्तंग पंगे नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग मजबे नमस्ताजे नमस्तंग निर्धामे नमस्तंग निर्वामे
1: नमो सर्व काले नमो सर्व दयाले
0: नमो सर्व रूपे नमो सर्व भूपे
1: नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे
0: नमो सर्व काले नमो सर्व पाले
1: नमस्तंग
0: नमस्तंग जन्मे नमस्तंग सुवर्मे
1: नमो सर्व गुणे नमो सर्व गुणे
0: नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे
1: नमो काल काले नमस्तंग दयाले
0: नमस्तंग वर्णे नमस्तंग मरणे
1: नमस्तंग जरारं नमस्तंग कृतारं
0: नमो सर्व तंदे नमोस्त बंदे
1: नमस्तंग साके नमस्तंग वाके
0: नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तस रागे नमस्तंग सुहागे
1: नमो सर्व सोखे नमो सर्व पोखे
0: नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता
1: नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे
0: नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले
1: त्रि शांतो प्रसाद रूप है रूप है जो है वो है
0: अलेख है पेख है नाम है अकाम है
1: ये है पे है जीत है पीत है
0: त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है
1: अनिल है अनाद है ये है जात है
0: अजन्म है वर्ण है भूत है अपर्ण है
1: गंज है पंज है चूज है जंज है
0: अमीख है रफीक है अतंध है अबंध है
1: सूज है सूज है काल है जाल है
0: अलाह है अजाह है अनंत है महंत है
1: अनीक है नसीक है निलंब है सांब है
0: अगम है अजम है भूत है अछूत है
1: रोग है शोक है कर्म है परम है
0: अजीत है अपीत है अबाह है अगाह है
1: अमान है निदान है अनेक है प्रेग है भुजंग प्रयात छंद नमो सर्वमान्य समासी निदाने
0: नमो देव देवे अपेखी अपेवे
1: नमो काल काले नमो सर्व काले
0: नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे
1: नमो अनंगी नाथे नृसंगी परमाथे
0: नमो पान पाने नमो मान माने
1: नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने
0: नमो गीत गीते नमो तान ताने
1: नमो नित नित्य नमो नाद नादे
0: नमो पान पाने नमो बाद बादे
1: अनंगी नामे समस्ती स्वरूपे
0: प्रपंगी प्रमाथे समस्ती बेभूते
1: कलंक बिनाने कलंकी स्वरूपे
0: नमो राज राजेश्वरं परम रूपे
1: नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे
0: नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे
1: नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे
0: नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
1: अपेक्षीय परमीय भोगीय भोक्ते
0: नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते
1: नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे
0: नमो प्रेत प्रेत देवे सतर्मे
1: नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे
0: नमो सासाह नमो भू भूपे
1: नमो दान दाने नमो मान माने
0: नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानं
1: नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र
0: नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं
1: सदा सच्चिदानंद सर्वनाशी
0: रूपे नूपे समस्त नवासी
1: सदा सच्चिदा बुद्ध दा वेद कर्ता
0: अदो और दं अगं ओग हर्ता
1: परम परमेश्वर पोष पाल
0: सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयाल
1: शेदिये पेदिये नामंग कामं
0: समस्त पर राजी समस्त सतावं
1: तेरा जोर चाचरी शांत
0: प्रभु है जू है देश है पेश है नमो सर्वाणे समस्ती निदाने नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे
1: नमो सर्व साजे
0: नमो सा साहे नमो मा माहे
1: नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते
0: नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे
1: नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे
0: नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग
1: नमो सर्व ज्ञान नमो परम तानं
0: नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग
1: नमो सर्व दर्शन नमो सर्व कृष्ण
0: नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे
1: नमो जीव जीव नमो बीज बीजे
0: अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्जे
1: पालन स्वरूपे कुकर्म प्रणाशी
0: सदा सर्वदा रिद सिद्धं नवासी
1: दर्पण शांत त्वा प्रसाद अमृत कर्मे अमृत में
0: अखाल जोगे अचल भोगे
1: अचल राजे अटल साजे
0: अखाल धर्मं अलख कर्म
1: सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता
0: सर्वं पाणे सर्वं माणे
1: सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं
0: सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता
1: सर्वं देवं सर्वं देवं
0: सर्वं काले सर्वं पाले
1: वाल शांत त्वा प्रसाद रूपनाद मोद
0: ਸਰਬ ਮਾਤਰਮਾ ਦੇਵ ਭੇਵਾਦ ਉਦਾਰ
1: ਸਰਬ ਕਾਲ ਸਰਬ ਕੋ ਮਨਕਾਲ
0: ਜਤ੍ਰ ਤਤ੍ਰ ਬਿਰਾਜਹੀ ਅਵਧੂਤ ਰੂਪ ਪ੍ਰਸਾਲ
1: ਨਾਮ ਧਾਮਨਾ ਜਾਤ ਜਾ ਕੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਰੇਖ
0: ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆਧਾਰ ਮੂਰਤ ਜੋ ਨਾਦ ਸੇਖ ਜਤ੍ਰ ਤਤ੍ਰ ਵਿਸੈ ਦਸੈ ਹੋਏ ਫੈਲਿਓ ਅਨੁਰਾਗ
1: ਨਾਮ ਕਾਮ ਭੀਨ ਪੇਖ ਤਾਮ ਹੁ ਨਾ ਜਾਏ
0: ਸਰਬ ਮਾਨ ਸਰਬਤ ਮਾਨ ਸਦੈਵ ਮਾਨਤ ਤਾਹੇ
1: ਏਕ ਮੂਰਤ ਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨ ਰੂਪ ਨੇਕ
0: ਖੇਲ ਖੇਲ

चक्र बक्र फिरे चत्र चक मानहि पुरतीन आद देव नाद मूर्त थाप्यो सवै जय थाप सर्व विश्व रचय स्वयं भव गडन पंजन हार तरम ताम सुपरम रहत अपूत अलख अपेश गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम गर्भ गंजन सर्व पंजन आदि रूप सूत सर्व लायक सर्व कायक सर्व कोपत पार सर्व शास्त्र न जाने जय रूप रंग अरेख कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवे ही बहुचित आसन भंग उपमान।

0: जब तू चलाए तब चले जिन्ना मार्ग पावे
1: कर कृपा जिन नाम लाए से हर हर सदा त्यावे
0: जिसनो कथा सुनाए अपने से गुरदारे सुख पावे
1: कहे नानक सच्चे साहिब जो पावे ते चलावे
0: सोहला सबद सुहावा सदा सोहला सत

दयाल पुरख मेहरवान वरना हर नानक सच वखाणी जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

संसार वढ़ांस महला पहला दखनी सच सरंदा सचा जानिए सचड़ा परविदगार जिने आपी ने आप साजे सचड़ा लख अपार दोए पुट जोड़ विछोड़िया ना गुरबिन घोरिया दारो सूरज चंद सिरजिया ना अनसचलत विचारो सचड़ा साहिब सच तू सचड़ा दे प्यारो रहाव तुद सिरजी मेदनी दुख सुख देवन हारो नारी पुरख सिरजै बिख माया मोह प्यारो खाणी बाणी तेरिया देह जिया आधारो

पंत मेह लियो सचे के गुण सारे जल मल जानी नवा लिया कपड़ पट अंबारे वाजे वजे सची बाणिया पंच मुए मन मारे जानी विछुनड़ मेरा मरण पया त्रिग जीवन संसारे जीवत मरे सो जानी।

खोले फासे। बाबा नांगड़ा आया जग में दुख सुख लिख लिखाया, लिखेड़ा साहा न टल जिहड़ा पुरब कमाया।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई आए। जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया। कर नाओ निध आवे ताए, सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी, सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दार दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां, चालियां मुक्तियां, हठियां जपियां तपियां, जिना नाम जपिया वंड के छकिया, देग चलाई देग वाही, देख के अमडिठ कीता, तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। जिन्हां सिंह सिंघणियां ने धर्म हे सीह दिते, बंद बंद कटवाए खोपरियां, लुहाईयां चरखड़ियां ते चढ़े तनारियां नाल चरवाए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिखे सिदक केसां सवासां संग निभाया, तिन्हां समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां जी का ध्यान तरके बोलना जी। प्रिसमय सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावै, चेतावन का सदका सर्ब सुख होए, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छा रियायत, तेग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय, खालसा जी के बोल बाले बोलना जी।